अष्टपदी जिसके अंतर राज विमान सो नरक पाती होत समान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत। आपस को करवंत कहावै जन्म मरे भोजन भ्रमावै। धर्म हुम का जो करे गुमान सो मूरखंदा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकी हा मुक्त आगे सुख पावै। धनवंता हुए कर गर्वावै तृण समान कर संग ना जावै। बहुलश्कर मान खूपर करे आस पल भीतरता का होय विनाश। सब दे आप जाने बलवंत खिन में होय जाय बसमंत। किसे ना बदे आपंकारी धर्मराय तिस करे खुआरी। गुरु प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दर गए परमान। कोट कर्म करे हो धारे श्रम पावे सगले बिरथारे। अनेक तपस्या करे अंकार नरक स्वरूप फिर अवतार। अनेक जतन कर आत्म निंदरवै हर दरगे को कैसे गवै। आपस को जो भला कहावै तसे भलाई निकट न आवै। सर्व की रंजा का मन होए कौ नानकता की निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए। जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्व जोन में फिरता। जब धारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत। जब लग वो मगन संगवाए तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लख कोट धावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग विख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ व्यर्थे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे परापत होए। करण कराम नंगापे आप सदा सदा नान घर जाप। करण करावन करने हार जिसके हाथ कहा विचार। जैसी दुष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभु सोए। जो घिसकी न सो अपने रंग सबते दूर सबू के संग। बूझे देखे करे विवेक आपे कापे अनेक। मरे ना बिन से आवे ना जाए नानक सदगी रे समाए।

संत कृपाल कृपा जे करे नान संसंग निंदक भी तरे संत के दुखन ते मुख भवे संतन के दुखन काग जून लवे संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन दृग जोन गिरमाए संत के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब कुशल है।

गोय तिस्कानाव्र कंठ परोय सिमर सिमर सिमर प्रभ सोय नानक बुगना लागे कोय उस्तद मन में कर निंकार कर मन मेरे सद व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुवेला कर ले जियो नैनो पैक ठाकुर का रंग सा संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर क्रम सुन हर कथा दर गय नानक उजल मथा

नै किस जन्मे नै किस मरे आपन चलता आप ही करे आवन जान दृष्टन दृष्ट आज्ञाकारी दारी सब श्रेष्ठ आपे आप सकल में आप अनेक जुग जरथाप ताप अविनाशी नाई किस खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड अलख अभय पुरुख प्रताप आप जपायते नानक जाप जन्म जाता सो सोभावंत सकल संसार उदरे धनवंत प्रभु के सेवक सल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द भय निहाल।

तंग राम नाम जब हृदय माए नानक पसेति घर जाहे। जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। तज मान लो मन बोल राम नाम हृदय में तोल। लाद के संदे संग चाल अवर त्याग भिख्या जंजाल। धन धन कह सब कोए मुख जल हर दर गए सोए। एवा पार बिरला वा पारे नानकता के सर बलहारे। चरण साध के ध्वज पी और अब साध को अपना जियो। साध की दूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान। साध से बाबड़ बागी पाइए साध संघर कीर्तन गाये। अनेक बंगते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे। ओट गई संते दर गाया सर्व सुख नानक तेह पाया। मृतक को जीवा लनहार भूखे को देव दयादार। समृदान जा की दृष्टि माए प्रभु लिखे का लेना पाए। सबक दिशा करने जोग तिस बिंदु सर हुआ ना होग। जब जन सदा सदा दिन रैणी सब देव जी निर्मल करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन गावे हर प्रभु चीत। भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय को होए। सच करनी सचता की रहत सच हृदय सच मुकैत।

आनंद रूप मंगल सर जाके सर्वथोक सुनिंद करता के राज में राज योग में जोगी तम में तभी सरग्रस्त में भोगी ध्याय ध्याय भक्ति सुख पाया नानक तिस प्रकार किने अंत न पाया जाकी लीला कीमत ना है सगल दे हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने भूत सगल प्रोही अपने सूत

नाना रूप जना ना जाके रंग नाना भे करे के रंग नाना विद कीनो विस्तार प्रभु नासी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर्ण पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंद बनाई अपनी कीमत आपे पाई सावगढ़ दिस गए सब दिस गए ठाओ जब जब जीव नान कर नाओ नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड नाम के धारे स्मृत वेद पुनान नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आकाश पताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुनिया सौ भवन नाम के संग उदर सुन सुरवन कर कृपा जस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन गत बाय रूप सद जा का सद स्थान पुरुष सद केवल प्रधान करदू सद सद जा की वाणी सदपुरुख समय समाणी सतकर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत विश्वास मूल सत सत उत्पत सतकर्णी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सतनान गुरते पाई सत भजन साधु उपदेश सत जन जा कैर दे प्रवेश सत निरत पूजे जे कोय नाम जपता की गत होय आप सद किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके सिर सो करने हार गवरना बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष भावे सो वर्तिया

राष्ट्रपति चरण ससद प्रसन्हार पूजा ससद सेवदार दर्शन ससद पे खनहार नाम ससद ध्यानहार आप सत सत्सवधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जस सुनता भूजन हार को सत्सव होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जनमान्या करण करावन तिन मूल पछान्या जाके हृदय विश्वास प्रभु आया तद ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय तय निर्भो होए बसाना जिस दे उपजै तिस माए समाना।

पाई अनुग भगत बंदन नित करे चरण कमल हृदय सिमरै सदबलहारी सदगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने यो हर रस पावे जन कोए अमृत पिए अमर सो होए उस पर काना ही कदे मिनास जाके मन मरगडे गुंतास आठ पैर हर का नाम ले सजुब दे सेवको दे मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर घर गेक अंधकार दीपक पर गासे नानक ब्रह्मो दुख दे नासे तबत माया ठान बरताई अनंत माया दुख ना ठेबाई जन्म मरण के मिटे देशे साधु के पूर्ण उपदेशे भव चूका निर्भव है बसे सकल व्याध मन देखे न से जिसका साधन कृपा धारी सासंग जब ना मुरारी तित पाई चूके ब्रह्म गावन सुन नानक घर घर जस श्रवन निर्गुण गाप सरगुण भी ओही कलाधार जिन सगली मोही अपने चरण

अष्टपदी संजना मिल करो विचार एक समर नाम यादार और उपाव समीत विसारो चरण कमल में गुरुधारो करण कारण सौरभ समरथ दृढ़ कर गौ नाम हरवथ एदन संजो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माय सर्व रोग नानक मिट जाए जिस धन को चार कुंड धावे सो धन हर सेवा ते पावे जैसो को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग परीत जैसो वा को करे भले करनी सासो बाब झर की सरणी अन गोपा भी रोग न जाए रोग मिटे खर यव खदलाय शरण निदान में हर नाम निदान जब नानक दर के प्रमान मन भर बोधो हर के नाय दय दिस धावता बैठाए तागो बिगन्ना लागे कोय जा कर दे बसे हर सोय कल ताती ठंडा हरनाओ सिमर सुमर सदा सुख पाओ भाव बिन से पूर्णो यास भगत वाया दम्बर गास तित कर जाय बसे मनासी कौ नान काटे जम फांसी तद विचार कह जन साचा जन्म रे सोगा चो काचा आवागन मिटे प्रभ से आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का हो गुदार हर सुमन प्राण आधार अनुकुपाव न छूटनगारे समसाद वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन मंचन नानक फल पाए सांगना चालस तेरे धना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुतमित कुटमर बनता इनते कहो तुम कमन सना था राज रंग माया विस्तार इनते कहो कमन छुटकार अस्वस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पासारी

प्रणन धोय भगजन के मंत्रण अंग बृला को पावे संग एक वस दीजे कर्मया गुरु प्रसाद नाम जब लया ताकि उमा कही न जाए नान क्रया श्रम समाय प्रवक्षण दीन दयाल भगत।

हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुम निशरण प्रभु भगवान सर्वे गुण मुकद भोग पाए एक नाम निवख हर के गुण गाय अनग्राज भोग उड़े आई हर के नाम की कथा मन भाई भोग भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी सौभा धनवंत हृदय बसे पूरन गुरुमंत।

सर्वस्वदि। जब कार्य कजना दृष्टिता पापुन तब कहते होता, जब धारी अपन सुन संवाद तब वैर ब्रोस के संकमात। जब इसका अपन चिन्ह न जापत तब हरक शोकों से व्यापत।

जब होवत प्रभु केवल धनी तब बंद मुकत कहो किस गनी। जब एक हर अगम अपार तब निरक्षरों को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब से सगत कहो के दठाए। जब आपे आप अपनी जो धरे तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन जलदाप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुखापन गासन ते जन्म मरण को का विनाशन। जब पूरन करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्रगोद किस पूछत लेखा। जब नाथ निंजन अगोचर आगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपन आप आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा। जय निर्मल प्रख प्रखपत होता तय मन मैल को क्या धोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत कौ कीस। जय जो स्वरूपी जो संसम आवे तय किसे भूख कवन तृपतावे। करन करावन करने हार नान करते काना है सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कलाया पेपर बीन ते वेद कदेव काहू को चीन।

जनपाय सो समदर्शी तत्कावेता नान सल सृष्ट का जेता जी जन सब ताके आद दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राग जिसको न मारे सो बुआ जिस मनो विसारे इस तबर कहाँ को जाए सब सर एक निरंजन राय जी की जुगजा के सौहाद।

मेले सासंग करो आनंद गुण गाओ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ दे का करो उद्धार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण धन गाय सुआ आठ पैर पर पेखो नेरा मटे।

पुत माता की, माता की आसी। आओ एक शब्द, ये पावन शब्द तरनवीर सिंह जी के जन्मदिन की खुशी विच आओ सारे आपां रल के असीस लईए सतगुरु जी की।

बब्बर शेरा चने चबाए बिच परकर्मा दे बब्बर शेरा चने चबाए बिच परकर्मा दे बब्बर शेरा चने चबाए बिच परकर्मा दे बब्बर शेरा

0: लिया बदला बेअंत सतवंत ने, बदला बेअंत सतवंत ने, पंथ दा उदार सिरा जेड़ा अड़ेगा अंत नू चढ़ेगा,
1: जेड़ा
0: अड़ेगा अंत नू चढ़ेगा। सचो सच दिता नूर ने सुना, बेअंत सिंघा तेरिया जग बिच रहिंदियां, सतवंत सिंघा तेरिया हां जी हां मारा दुनिया जा।
2: सत्कारियो खालसा जी, 31 अक्टूबर नूं इंदिरा मार दित्ती ते 31 अगस्त नूं बेअंता झटकाया है। बनिया फिरदा सी जकरिया खान जेड़ा सिग्घा मिट्टी दे विच मलाया है। अज वीर बेअंत सतवंत सिंह ने सुती कौम दी अलख जगा दित्ती।

पगव सगल समगरी तुम रह सूत्र तारी तुम ते हो ए सो आज्ञा तुमरी गत मित तुम ही जान नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौने दयावै ताई सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यांतर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के निठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत असीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चुराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यांतर की खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यांतर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर।

ख्वार हुए सब मिलेंगे, ख्वार हुए सब मिलेंगे। बोले सौ निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਜੀ
1: ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹੋਮੈ ਖੋਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏੜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਕਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਪੰਜ ਚੋਰ ਜੋ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੁਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਛੜਿਆ ਨੂੰ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਯੁੱਗ ਹਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਏ ਕਹਿਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧਸੰਗ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਵਤਾ ਦੋਰਾ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਲਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਤ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਲਿਵ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਧਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਲਿਵ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ, ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਭੀ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਬੀਰਿਕ ਪਾਤ ਪਾਰ ਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭੰਬੀਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਅਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੰਗਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੁਗਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਔਰ ਸੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੁਗਤੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈ, ਅਕਲ ਦੇ ਜੋਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ, ਸੁਨਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤਰਹਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਸਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰਖਾਤਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ? ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬੱਜਰ ਕਪਾੜ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਹੋਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਲਈਏ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੜਾਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह

वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह
गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह
guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah guru wah

Guru.
वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

हमरे रुष्ट सवै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहि बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा।

कृपा करी हम पर जगमाता, गन ग्रंथ करा पूर्ण सुब्रता, किल बिख सकल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुज जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िला। सुने गुंग जो ज्याहि सुरसना पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै, हो जो याकी एक बार चौपई को कहै। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं अन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे, हम एक न जान्यो। श्री स्पान

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तम पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया

अविनाशी जीअन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निदान भगतन कौ बरतन, बिरला पावै कोई।

था। काम क्रोधन गर्भा परया मिल साधु खंड लखंडा है, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुनवडा है, कर डंडौत पुनवडा है, रहाव साकत हर रस साधना जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यों ज्यों चरै च वैदक पावे, जमकाल सह सिर डंडा है, हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी भर्ग पाया परमेश्वर।

0: नानक चाओ ए हो, नानक चाओ ए हो,
1: नानक
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: बोले सोनेहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बहादुर शाह बड़ा हैरान होया। संगत विच बैठा सोची जाता है, अगे भी कई बार सतगुरां नूं मिलिया, होर भी संगत आंदी है, पर जदों मैं मिलदा हां ते किड्डे प्यार विच भिज के सतगुरु आखदे ने धन गुरु रामदास, भी इस गल दे पिछे केड़ा राज छुपिया है। बैठा सोची जाता है, सतगुरु आखन लगे क्यों बई बहादुर शाह केड़ियां सोचां सोचदा है, की सोचदा है। सतगुरु तुसी दिलां दियां जानन वाले, तुसी बुझ गए हो, जान गए हो मैं की सोचदा। ते सतसंगियो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ संगत नूं इक केड़ी गाथा सुना रहे। किंदे ओ समा सी, तन गुरु रामदास पातशाह श्री अमृतसर दे विच कार सेवा करा रहे सन। गुरु रामदास महाराज मौत संगत सेवा वास्ते आंदी, आ हुण भी सेवा आंदी है ना। कुछ बंदे निष्कामी होंदे ने ते कुछ सेवादार जिन्हां ने दिहाड़ीदार होंदे ने, अपनी मेहनत

पर मैनू एक गल दसो, इस गल दे नाल मेरा की संबंध? ये गल दसो। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्यार दे विच भिज के नेत्र बंद करके आखन लगे, बहादुर शाह ओ बुढ़ा बाबा कोई होर नहीं, वो तू ही हुई सी जो एक एक प्रसादे नूं तरसदा रहिंदा सी, तू ही हुई सी। अज जन्म लैके सारी दुनिया ते राजा राज करदा है, किड्डे किड्डे नौकर चाकर तेरे अगे हाथ बन्नी खलोते ने, आ देख लै गुरु रामदास दीयां रहमतां तेरे कोल अज तक नहीं मुकियां, अज तक नहीं मुकियां, पता नहीं किन्ना चिर तू खानियां ने, किन्ना होर सुख भोगना है, कौन जाने गुण तेरे चरणा ते डिग पिया, तेरी हो गया अज बहादुर शाह सतगुरु, तेरे गुणा नू कोई नहीं जान सकता, तेरिया रहमतां नू कोई नहीं जान सकता। सो सतसंगियो बख्शिश हो रही है, इसीलिए गुरसिख नू ए हुक्म है, तू पुन दान करदा रहा, तू गरीब दे मूंह दे विच पांदा रहा, जिथे धन कमा के अपने बच्चियां दे मुख पांदा है ना, गरीब दे मूंह विच भी पाया कर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आख रहे ने, गोलक राखे ने जो शलका करे व्यापार, कहे गोविंद सिंह लाल जी भोगे नरक हजार। जिहड़ा दसवंध नहीं ना कटदा वो जीवदे जी भी नरक भोगदा है, उहदा सारा धन हॉस्पिटलां विच कचहरियां विच मुकदमियां विच ही लग जाता है, भोगे नरक हजार, हजारां नरक जीवदे जी भोगदा है। नहीं बई, नेक कमाई करके किसे भुखे नूं भोजन छका दिया कर, किसे तन दे नंगे नूं कपड़ा पहना दिया कर, किसे गरीब दे बच्चे दी पढ़ाई दी जिम्मेवारी लै लिया कर, किसे गरीब नूं किताबां ही लै दिया कर, किसे गरीब दी बच्ची दी शादी ते पैसे खर्च दिया कर। गुरु घर विच तन दी लोड़ है, उत्थे सेवा ला दिया कर। दसबंध कढ़न दे कई तरीके ने, कई तरीके ने, पर जरूर कढ़िया कर, कोई फर्क नहीं पैंदा। महीने दे विच 30 दिन ने, ते 2 दिन दी कमाई ला दिया कर गुरु लेखे, ते सतगुरु बख्शां करेगा। बाबा नंद सिंह दी बख्शिश करदे सन, औखा वेला आ जावे ना ते कदी भी दसबंध नहीं रोकना चाहीदा। देखो बाबा जी दे किहो जिहे बचन ने, औखा वेला आ जावे कदी भी दसवंध ना रोको, फिर सौखा वेला छेती आ जाता है, सौखा वेला छेती आ जाता है। कौन जाने गुण तेरे, ऐ मेरे मालक तेरे गुणा नू कौन जान सकता है।

कथा ज्ञान। पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास, गुर अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत, अगन देखत गत चरण कमल जास। सब विद मान्यो मन तभी पयो प्रसन्न, राज योग तकत दियन गुर रामदास।

जाम गुरु होए वाल तने क्या गर्व दीजै, जाम गुरु होए वाल लख बाहे क्या कीजै। जाम गुरु होए वाल ज्ञान और ध्यान अनन पर, जाम गुरु होए वाल शब्द साखी सो सच्चे कर।

0: सुख पायो।
1: समरथ गुरु सिर हत्तरयो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरियो, निस्बासर एक समान त्यान। सो नाम सुने सुत पान डरियो, पंदार सुहास जगत गुरु की। पारस पेट परस करियो, रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हथ तरियो, पंदास आस जगत गुरु की। पारस पेट

अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखस फारे कर आज। पुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बो साज। सो दामा अपदा ते राखिया,

ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए। पंचे सोहे दर्रा जान पंचा का गुर एक ध्यान। तौल तनम दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत। धरती होर परै होर होर तिस्ते भारत।

0: मंत्रे नमो यंत्र यंत्र
1: नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी सदा सिद्धा बुद्धा वृत्तकर्ता परम पर परमेश्वर प्रोक्ष पालन

namo sarva mantra namo sarva jantra namo sarva ranga tripangi alange akhiche apiche samastan pasiche sada sarvada siddhagne vasi अकाल जोगे चल पोगे अकाल तर्मन अलग कर्मन सर्वन पाने सर्वन माने सर्वन भुक्ता सर्वन जुक्ता सर्वन काले सर्वन पाले सर्व मांतिर मान देव पेदा दुदार तत तत विराजिए अवधूत रूप रिसाल जो नारेक जत तंत्र दिशा।

रूप रंग न जात पात सो जाने के जेब चक्र बकर फिरे चतुर चक्र मानिए पुर्तीन आ देव अनार मूरत थाप्यो सभी जे थाप सर्व कायक सर्व

देवान देव महान रंगान रंगालान काल गत मित पार्वण गत उदार अतुल छंद गत

0: पार आदि कथनी अनाथ
1: ख्याल
0: कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंजंज गात अनरंज पात अडीठ तरम अत डीठ करम हर बोल मना चंत्र प्रसार करनाले है अर काले है जगदेश्वर है परमेश्वर
1: है
0: त्रित के तन है जग के कर्ण
1: है
0: सर्वन पर है सर्वन कर है करुणा कर है विशंबर
1: है
0: ब्रह्मंडस है कलखंडस
1: है
0: अजपा जप है थपा थप है अमृता अमृत है करुणा कृत है अमितेश्वर है परमेश्वर
1: है
0: अजबा कृत है अमृता अमृत
1: है
0: विशंबर है करुणालय
2: है
0: पपंजन है अर्गंजन
1: है
0: अकलन कृत है सर्वाकृत
1: है
0: परमात्म है सर्वात्म
1: है
0: पुजंग पर्यात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र
2: नमो राज राज नमो इंद्र
0: नमो अंधकारे नमो तेज तेज
2: नमो बिंद्र बिंद्र नमो बीज बीज
0: नमो नमो राजन ताम सन सांत रूपे
2: नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
2: नमो मंत्र मंत्रे नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने
2: नमो भोज भोजे नमो पान पाने
0: नमो कले कर्ता।

0: जो कुल कोई बात आए है ताके कालिंग नहीं आए है कृपा दर्शन जाए नो ताके ताप मार हो
1: सब होई, शास सके ना कोई।
0: एक बार जिंद में सुबारा

0: कृपा करिए मो जग माता कंस करा पूरन सब राता
1: कलबक सकल देखो हरता दोष दोखियन को शय करता
0: श्री ईश्वर जब दे दियाला पूरन करा कंद स्काला
1: मन बाचत फल पावे सोई दुगनत से प्याप्त कोई
0: सुन जो यास रसन पावे स्ने मोच लचतता आवे
1: दुख दर पौन करनाते नर करे हो जो जाती एक बार चौपाई को कह
0: चौपी समस्त त्रस सुनी जय सुनी की जय
1: पादर सुदेश मेरा वारा तीस सत्र ग्रंथ सारा।

वाजे पंच बत कर सबागे कर सबागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया तुर कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे।

0: नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया।
1: सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया।
0: पाया अमृत गुर कृपा किनी सच्चा मन वसाया।
1: जी जन सब तुद उपाय इक वेख पर सण आया।
0: लब लोग हंकार चुका सतगुरु।

0: चलाए तिवे चले जिना मार्ग पावे।
1: कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ते आवे।
0: जिसनो कथा सुनाए अपने से गुरुद्वारे सुख पावे।
1: कह नानक सच्चे साहेब ज्यो पावे तिवे चलावे।
0: एहो सुहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सुहेला सतगुरु सुनाया।
1: एहो तिन कह मन वस्या जिन तुरों लिखिया आया।
0: एक फिर एक मेरे करे गला गली किने ना पाया।
1: कह नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया।
0: पवित्र हुए से जना जिनी हर ते आया।
1: हर ते आया पवित्र होए गुरमुख जिनी ते आया।
0: पवित्र माता पिता कुटुंब सहित सियो पवित्र संगत सबाया।
1: कहंदे पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया।
0: कह नानक से पवित्र जिनी गुरमुख।

0: जम तोता जाए
1: मन तो वो शब्द लागो हर सियो रोचित लाए
0: कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजय एव सहसा इव जाए
1: जियो मेले बारो निर्मल जियोता मेले तिनी जन्म जुए हारिया
0: ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया
1: वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जियो बेतालिया
0: कह नानक जिन सत्तजया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया
1: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुरु ते करनी कमानी
0: कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सत समानी
1: जन्म

0: गुरु के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मा समाले
1: आप चट सदा रहे पढ़े गुरु बिन अवर न जाने कोए
0: कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख हुए
1: जे को गुरु ते वे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे
0: पावे मुक्त न होते कोई पूछो विवेकिया जाए
1: अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए
0: फिर मुक्त पाए लाख चरनी सतगुरु शब्द सुनाए
1: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए
0: आओ सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी
1: बाणी ते गावो गुरु केरी बाणी आसिर बाणी
0: जिनको नदर करम होवे हृदय तिना समाणी
1: पीवो अमृत सदा रो हर रंग जपियो सारंग पाणी
0: कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी
0: बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी
1: कहदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आप बखाणी
0: हर हर नित करे रसना कया कचू ना जानी
1: चित चित का है लया माया बोलन पे रवाणी
0: कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी
1: का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ
0: शब्द रतन जित मन लागा एओ हुआ समाओ
1: शब्द से ती मन मिलिया सच्चे लाया भाव
0: आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए
1: कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ
0: शिव सकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म बरताए
1: हुक्म बरताए आप देखे गुरमुख किसे बुझाए
0: तोरे बंधन होवे मुक्त शब्द मन बसाए
1: गुरमुख जिसु आप करे सो होवे एक सिव लिवलाए
0: कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए तते सा न जानी गुरु बाजो तते सा न जानी
1: संसार ब्रह्म सुत्ता सुतिया रहण निहाणी
0: गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी
1: कहे नानक सो तत पाए जिस मंदिर हर लिव लागे जागत रहण निहाणी
0: माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी
1: मनो क्यों विसारी वरदाता जे अगन में आहार पहुंचावे
0: उसनो क्यों पोए न सके जिसनो अपनी लिव लावे
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए
0: कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिए
1: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया
0: माया अगन सब एको जेही करते खेल रचाया
1: जाते इस बाणा ता जम्या परवार भला भाया
0: लिव चुरकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया
1: ए माया जिथर बिसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिने विचे माया पाया
1: हर आप मुलक है मूल न पाया जाए
0: मूल न पाया जाए किसे विठो रहे लोक विलाए
1: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसु सिर सोपिए विचो आप जाए
0: जिस दा जियो तिस मिल रहे हर बसे मनाए
1: हर आप मुलक है भाव तिना के नानका जिन हर पल्ले पाए
2: हर रास मेरी मन वण जारा हर रास मेरी मन वण जारा सतगुर ते रास जानी
3: हर हर नित जपहिओ जियो लाहा कटियो दिहाड़ी
2: एह तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा
1: कह नानक हर रास मेरी मन होआ वण जारा
2: ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए
1: प्यास न जाए होत किते जिचर हर रस पल्ले न पाए
2: हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुर न तृष्णा लागे आए
3: ए हो हर रस घर भी पाई है सतगुर मिले जिसे आए
2: कहे नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसे मनाए
1: ए सरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी तातु जग में आया
2: हर जोत रखी तुद विच तातु जग में आया
1: हर आपे माता आपे पिता जिन जीव पाए जगत दिखाया
2: गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया
1: कहे नानक सृष्टि का मूल रचिया जोत रखी तातु जग में आया
2: मन छाओ पिया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाव सखी ग्रह मंदर बनया
1: हर गाओ मंगल सखिए सोग दुख ना व्यापे
2: गुर चरण लागे दिन सभागे आपना फिर जापे
1: अनद वाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो
2: कहे नानक तब आप मिलिया करण कारण जोगो
1: ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया
2: की कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया
1: जिना तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया
2: गुर प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया
1: कह नानक यो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से जित लाया
2: हे नेत्रो मेरियो हर तुम मैं जोत तरी हर बिन अवर न देखो कोई
1: हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हार निहालिया
2: एह विस संसार तुम देख दे एव हर का रूप है हर रूप नदरी आया
1: गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई
2: कहे नानक एह नेत्र अंध से सतगुरु मिलिए दिव दृष्ट होई
1: ए सरवणो मेरियो सचे सुने नो बटाए
4: ਪਠਾਏ
2: ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ
4: ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ
2: ਸਚ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ
4: ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅਮਰਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸਾਚੇ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ
2: ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ
4: ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਨਾ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ
2: ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਪਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ
4: ਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਮ ਨਾਮ ਨੇ ਤਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ
2: ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ
4: ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੇ ਘਰ ਗਾਵੋ
2: ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰ ਸਾਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤਿਆ

सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

सगल समग्री तुम रे सूत्र धारी तुम ते तुमरी गत मेत तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आए घर नौने दया वह ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यांतर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौह साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के निठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेठ सीस दिते बन बन कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यांतर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यांतर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत देख टेक फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे मुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख आपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण नेताणियां दे ताण नेउटियां दी ओट सच्ची पिता वाहिगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज आप जी दे हजूर अमृत वेले दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर नितनेम जी दियां बाणियां जी की अरदास बेअंत बाणियां दे जाप संगति रूप विच होए सतगुरु जी ओ गुरबाणी पढ़दियां आप जी दे हजूर उचारण करदियां सेवावां निभाउंदियां होईयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां गलतियां दी खिमा बख्शणी दर आई संगत नू नेम अते प्रेम बख्शने गुरसिखी सिदक भरोसा उद्यम उपराले आपसी भाईचारक सांझ बख्शनी कड़ा प्रसाद ही देख सज के हाजरै दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो करो कृपा पावन हुक्म बख्शिश करके संगतां नू निहाल करो सही प्यारे मेल
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।

फिरतु फिरतु प्रभु आया पर्यन्तो शरणाये नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया

चरण सरन गुर एक पैंडा जाय चल। सतगुर कोट पैंडा गह होए लेत है, एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हित है। पावनी भगत पाए कौड़ी अग्र भाग राखे, ताहे गुर सर्ब निदान दान देत है। सतगुर दया निद महिमा अगाध बोध, नमो नमो नमो नमो नेत नेत नेत है। सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों चट्टी है, तुद डिठे सच्चे पात साह मल।